एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंजा

सफरी सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटा कन्फ्युजन गेट द सोलुसन इट्स अ कुल धुली डट कम गेट द सोलुसन इट्स अ कुल धुली डट कम